भगते दुख मिटे प्रेत राम भव समुद्र सुख जनाव प्रेत राम परम शांति परम निधान दिव्य राम

को आजाद है एक रामना माता पिता बंधु से कब काम भक्त जन जीवन जन एक रामन भक्त जन जीवन जन एक रामन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम

साई राम डियर लिसनर्स, भगवान बाबा हैज ऑफन कोटेड, पेशेंस अराइजेस बिटवीन टू डिफिकल्टीज. व्हाई इज पेशेंस नेसेसरी टू सक्सीड? इन टुडेज डिस्कोर्स भगवान बाबा आंसर्स दिस क्वेश्चन. लेट अस नाउ लिसन टू भगवान बाबाज डिवाइन डिस्कोर्स डिलीवर्ड ऑन 25th of May 2000 ड्यूरिंग द समर कोर्स इन इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी in Vrindavan, Bangalore.